कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: पर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहां थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती

46 पैसा, बिक्री दर 9 रुपया 50 पैसा। चाइनिज युआन 1 को खरीदर 22 रुपया 77 पैसा, बिक्री दर 22 रुपया 86 पैसा। साउदी अरेबियन रियाल 1 को खरीदर 41 रुपया 9 पैसा, बिक्री दर 41 रुपया 25 पैसा। कटारी रियाल 1 को खरीदर 42 रुपया 30 पैसा, बिक्री दर 42 रुपया 47 पैसा। थाई भाट 1 को खरीदर 4 रुपया 56 पैसा, बिक्री दर 4 रुपया 58 पैसा। यूएई डिरहाम 1 को खरीदर 41 रुपया 99 पैसा, बिक्री दर 42 रुपया 15 पैसा। मलेशियन रिंगित 1 को खरीदर 37 रुपया 73 पैसा, बिक्री दर 37 रुपया 88 पैसा। साउथ कोरियन वान 100 को खरीदर 10 रुपया 41 पैसा, बिक्री दर 10 रुपया 45 पैसा। स्विडिस क्रोनर 1 को खरीदर 15 रुपया 88 पैसा, बिक्री दर 15 रुपया 94 पैसा। डेनिस क्रोनर 1 को खरीदर 23 रुपया 53 पैसा, बिक्री दर 23 रुपया 62 पैसा। हङकङ डलर 1 को खरीदर 19 रुपया 67 पैसा, बिक्री दर 19 रुपया 75 पैसा। कुवैती डिनार 1 को खरीदर 501 रुपया 1 पैसा, बिक्री दर 502 रुपया 96 पैसा। बारेन डिनार 1 को खरीदर 408 रुपया 99 पैसा, बिक्री दर 410 रुपया 58 पैसा। र अन्तमा ओमानी रियाल 1 को खरिदर 400 रुपया 55 पैसा, बिक्री दर 402 रुपया 10 पैसा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर। अब फेरि गीत सङ्गीतको पालो, बादल सरी। यो गीत स्वीकार्न सब स्वप्निल शर्मा र जोन राईको स्वरमा।